सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

राम भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री केके नंदन भगवान की, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी।

चंद्र की जय, श्री अयोध्या राम जी लला की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री रमापति रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि।

भोला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

पड़ाव की मौन साक्षी है, जिसके तट पर शताब्दियों पहले सभ्यता का सूर्य उगा, धरती में जीवन के अंकुर फूटे, फसलें लहलहाई, मानव का आंचल सोने के दाने से भर गया। उसका मन नाच उठा, उसके कदम थिरक

0: ताप्ती और संवरण के विवाह की एक सुंदर कथा आती है। कहते हैं संवरण वरुण के अवतार थे। उन्हें ऋषि अगस्त के शाप से मौनी जन्म ग्रहण करना पड़ा था। स्थानीय महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्यामकांत कुलकर्णी ने बताया,
1: पुराणों में एक ऐसा प्रसंग आता है कि अमृत मंथन के बाद वरुण देवता सुरा का कलश लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में ठहरे। ऋषि आश्रम में नहीं थे। वरुण ने मदिरा का जी भर कर पान किया और आश्रम की स्त्रियों के साथ रंग रेलिया मनाने लगे। ऋषि लौटकर आए तो इस उद्धत व्यवहार को देखकर क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने वरुण को श्राप दे दिया, देवाधन तूने आश्रम की पवित्रता को खंडित किया है, जा मृत्युलोक में जन्म लेकर सापित जीवन बिता। वरुण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे मुनि से क्षमा याचना करने लगे। मुनि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु यथा समय ताप्ती से तुम्हारा विवाह होगा और पुत्र जन्म के साथ तुम शाप मुक्त हो जाओगे। इस तरह वरुण को धरती पर आना पड़ा।
0: एक दिन महर्षि श्रृंग मेखल ने उन्हें सूर्य की तपस्या करने का उपदेश दिया।
2: वत, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न हुआ।
3: प्रभु, मैं कुरुवंशी राजकुमार ऋतुपुत्र संवरण आपको प्रणाम करता हूँ।
2: सफल मनोरथ हो, वरदान मांगो।
3: आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
2: हम और भी प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें अपनी तेजस्वी कन्या ताप्ती का हाथ देता हूँ। इसे सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार करो।
3: मैं अनुग्रहित हुआ।

0: पर एक ताल बना दिया है। ये एक पवित्र तीर्थ है।
1: इस सरोवर का महत्व बताते हुए बैतूल महाविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर पांडे कहते हैं,
2: बैतूल जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर स्थित मुल्ताई नामक शहर के मध्य के पवित्र जलकुंड से ताप्ती का उद्गम माना जाता है, किंतु वास्तव में मुल्ताई से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर 790 मीटर ऊंची सतपुड़ा की एक पर्वत श्रृंखला से यह नदी निकलती है।
1: मुल्ताई महाविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर आलोक शुक्ल बताते हैं,
3: मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। यह 21 कल्प ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की विशेषता यह है कि इसके किनारे बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। यहाँ सात कुंड हैं।
1: मुल्ताई के वयोवृद्ध नागरिक रामजीराव बाबूराव पाटिल इस सरोवर के ऐतिहासिक संदर्भों की जानकारी देते हुए कहते हैं,
2: सन 1763 के

0: लगभग ज्ञानी जी भोसले ने उस तालाब के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। आज जो ताप्ती तालाब की पाषाण की हुड़ियों से बना हुआ जो नैनाभिराम तालाब आपको दिखाई पड़ रहा है वह वास्तव में ज्ञानी जी भोसले ने बनवाया था इस उपलक्ष्य में कि इस नदी के जल से मेरा रोग दूर हुआ है, इसलिए इस उपलक्ष्य में उन्होंने इसको बनाया था। यहाँ तात्या टोपे भी 1858 में आए थे। यहाँ के ब्राह्मणों को उन्होंने एक एक कसरफी सोने की दक्षिणा में भी दी थी। अंग्रेजों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने यहाँ आकर जिन जिन लोगों को उन्होंने असरफियाँ प्रदान की थी उन सब से वो असरफियाँ लेकर और उनको सजा भी दी थी।
1: कई लोग यहाँ पिंडदान करने भी आते हैं और यहाँ अस्थि विसर्जन कर अपने पितरों की आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त

सदियों पहले आधीरों ने ताप्ति के तट पर बस्तियां बसाई। आधी एक वीर आर्य जाति, गौरा रंग, ऊंचा कद, लंबी भुजाएं और चौड़ा वक्षस्थल। देखते ही देखते

बढ़ती और बिगड़ते रहे, राज्य फैलते और सिकुड़ते रहे। सातवाहन और शकों में युद्ध हुए, शकों और आदिरों की तलवारें टकराई। चालुक्य और राष्ट्रकूट, यादव और यवन अपनी अपनी सत्ता के

0: आज भी खड़ा है, निश्चल और अधिक,
1: जिसकी एक एक दीवार खानदेश के गौरव में अतीत की कहानी कह रही है, जिसका एक एक पत्थर पंतपाल चौहान और इष्टपाल हांडा के शौर्य की गाथा गा रहा है।
2: ये मिट्टी हमारी माँ है, हमारा गौरव है, हमारा सर्वस्व है। आज इसकी रक्षा में प्राण देने की घड़ी आ गई है। बोलो, तैयार हो?
3: हम तैयार हैं।
2: हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे,
3: जरूर लड़ेंगे।
2: सिल सिल कट जाएंगे पर घुटने नहीं टेकेंगे,
3: घुटने नहीं टेकेंगे।
0: खानदेश की धरती पर ताप्ती की लहरों को छूता हुआ एक और किला है खानदेश।

0: करते हैं।
1: उर्वाबाद के पास जहाँ पूर्णा नदी ताप्ती के प्रवाह में आकर मिलती है वहाँ विद्यमान है चांगदेव महाराज की समाधि। कहते हैं चांगदेव एक शापित मरुदगण थे जिन्हें संत ज्ञानेश्वर की कृपा से पुनः परम पद प्राप्त हुआ था। हर वर्ष यहाँ मेला लगता है। सारा

0: इसके महत्व का वर्णन करते हुए राजलोक भट्ट कहते हैं,
1: प्रकाशा को उसको प्रतीकाशी कहा है। प्रतीकाशी इसलिए कि बनारस वगैरह या तो फिर अपने पूरे भारत वर्ष के अंदर पुष्पदंतेश्वर नामक महादेव का दर्शन भक्तजनों को कहीं भी मिलता नहीं है। कोई भक्तजन यहाँ आकर के लेते हैं और कृतार्थ होते हैं। और ऐसा कहा जाता है इधर या तो अपने पूरे भारत वर्ष में कि भाई तीर्थ यात्रा तो अपन ने की, लेकिन यहाँ प्रकाशिया चलो तो फिर जो कुछ भी थोड़ा बाकी है वो तो मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं और नानाधिक कर्म करके पहले पुष्पदंतेश्वर भगवान का महादेव का दर्शन लेते हैं। संस्कृत में तापी के बारे में जो कुछ भी बताया है तापी महात्मा के अंदर, तो गुप्तेश्वर प्रकाशाया राम क्षेत्र के सुंदरी, गुप्तेश्वर प्रकाशाया राम क्षेत्र के सुंदरी सर्वत्र दुर्लभा तापी त्रिशु स्थाने विशेषतः।
2: यह ताप्ती की धारा भगवान पुष्पदंतेश्वर, केदारेश्वर और सिद्धेश्वर

0: का मंदिर है। यहाँ 12वें वर्ष नियुक्त पर्व पर मेला लगता है। ताप्ती महात्म्य का पारायण किया जाता है।
1: तो सज्जनों, गंगा ने धरती पर आना तो स्वीकार कर लिया, परंतु इसमें शंका प्रकट की कि धरती पर ताप्ती जैसी पवित्र नदी के रहते मुझे कौन पूछेगा। गंगा का प्रश्न सुनकर शंकर भगवान ने नारद मुनि को आज्ञा दी कि जाओ और ताप्ती का महात्म्य हर लाओ। नारद आए, परंतु उन्हें चोरी का कलंक लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ताप्ती ने स्वयं अपना महात्म्य ताक दिया, उसे पानी में प्रवाहित कर दिया और इस प्रकार सज्जनों गंगा धरती पर आ गई। बोल ताप्ती माता की जय।
2: जिस प्रकार प्रकाशा में तीन धाराओं का संगम है, उसी प्रकार ताप्ती का ये प्रदेश तीन संस्कृतियों का संगम है।
0: बनों और पर्वतों में इतना की बल खाती श्वेत शुभ्र धारा क्षीण धारा समतल प्रदेश में पहुँच कर विस्तृत नदी का रूप धारण कर लेती है।

0: देश के लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। एडी के शेषराव गावंडे इसका विवरण देते हुए कहते हैं,
1: नेपाल के पूर्वी भाग में करीबन 6-7 मील दूरी पर डहरगांव के समीप अर्थात कुचंडा के पास करीबन 30 मील के क्षेत्र में कोयला देवताओं से रूप में पत्थरों में चमकीले शंख पाए जाते हैं तथा रवेदार चमकदार पत्थर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कुआ आदि खोदने से कोयले की मात्रा अभ्रक निकलता रहता है और तापी के जल में बहुत आयत रूप से कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक है।
0: तापी के प्रवाह पर कई छोटे बड़े बांध बांधे गए हैं जिनमें सबसे पहले आते हैं खरिया घुटू और नवासा। इन बांधों से निकली नहरों ने किसानों के जीवन में नई क्रांति ला दी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों का 1.25 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र इन सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित हुआ है। बैतूल के मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के तंत्री इंद्र सिंह गौड़ ताप्ती के जल ग्रहण क्षेत्र की जानकारी देते हुए बताते हैं,
2: ताप्ती नदी की लंबाई उद्गम स्थान से संगम तक 730 किलोमीटर है। उसमें से मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 332 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 217 किलोमीटर और गुजरात में 175 किलोमीटर है। निर्मित 20 लघु योजनाओं से 905 हेक्टेयर होता है।

एक निर्माणाधीन 18 लघु सिंचाई योजनाओं से 5,400 एजुकेशन होगा। प्रस्तावित एक वृद्ध सिंचाई योजना और 45 लघु सिंचाई योजनाओं से 36,200 हेक्टर में एजुकेशन होगा।

0: का लोअर ताप्ती प्रकल्प लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन को सुजलाम सुजलाम होने का वरदान देता है। ताप्ती जल विकास परिषद के अध्यक्ष इसे अन्ना पाटिल कहते हैं,
1: कई साल से ताप्ती का पानी यूज हो रहा था, अब इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था कि जिसको तापी बसिन बोलते हैं। उस तापी बसिन का अगर विकास करना है तो तापी और उसके प्रोजेक्ट का पानी इस्तेमाल करने के सिवा इसका विकास हो नहीं सकता है। अब हम पानी के इस्तेमाल के लिए तो डैम्स बनाएंगे खुड़िया घाटी में, नावथा में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर अपर तापी लोअर तापी इसमें डैम बना के उनका वितरण करेंगे। गवर्नमेंट को हम एक प्रस्ताव देंगे वो इस विकास के लिए तापी अथॉरिटी क्रिएट की जाए। इस अथॉरिटी के हिसाब से 10 साल के अंदर इसका पूरा विकास हो सके, पानी का इस्तेमाल हो सके।
2: गुजरात में

0: बांध के कई देश हैं, जैसे कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन और सबसे महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण। उकाई बांध से सीधा 152,000 हेक्टर की सिंचाई होती है। इसके अलावा उकाई बांध से सातरा पर यह पूरी पानी दिया जाता है, जिससे 227,500 हेक्टर की सिंचाई होती है। इस योजना से सूरत, वलसाड़ और भरूच जिला के अधिकांश भाग लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा 300 मेगावाट पनबिजली भी तैयार की जाती है। प्रतिवर्ष 5,000 टन मछली का उत्पादन किया जाता है।
1: उकाई बांध मशीनरी विभाग के उप कार्यकारी अभियंता आर जे मंडालिया बांध के विषय में और जानकारी देते हुए कहते हैं,
2: कई जलाशय में गुरुत्म पानी की संग्रह शक्ति 6.9 मिलियन एकर फीट की है और जिसमें से 5.75 मिलियन एकर फीट पानी का उपयोग सिंचाई और बिजली के लिए किया जाता है। उकाई बांध की लंबाई 5 किलोमीटर है। उकाई माटी बांध की महत्तम ऊंचाई 68 मीटर है और पक्का बांध की महत्तम ऊंचाई 80 मीटर है। छलती बांध में 22 दरवाजे लगे हैं, जिनके द्वारा 18 लाख घन फुट प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा सकता है।
1: ताप्ती के अंतिम पड़ाव पर स्थित है सूरत, गुजरात का स्वर्ण नगर सूरत, जिसने इतिहास देखा ही नहीं बल्कि इतिहास का स्वयं निर्माण किया है। मुगलों के आक्रमण से लेकर स्वतंत्रता संघर्ष तक की असंख्य गौरव गाथाएं जिसकी गलियों में गूंजती रही है। सोनगढ़ और सूरत के गढ़ जिसके पहरेदार रहे हैं। सूरत के एनटीबी आर्ट्स कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन मेघानी बताते हैं,
3: प्राचीन काल में या मध्ययुगीन समय में सोलंकियों की तो सत्ता उभर थी ही, उसके बाद में जब स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई यानी सन 1411 के बाद, तब पहले पहले हमें इतिहास में ऐसी जानकारी मिलती है कि जो यहाँ का सुल्तान मुजफ्फर शाह सतन था, उसका पुत्र मस्ती खान यानी सूरत और रामदेव का गवर्नर था, ऐसा उल्लेख मीरा के सिकंदर में सर्वप्रथम हमें मिलता है।
1: प्रोफेसर मेघानी सूरत के किले की सुदृढ़ता का वर्णन करते हुए कहते हैं,
3: आफ्टर 1573 यानी 1573 के बाद मुगलों की सत्ता हुई, अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर अपनी सत्ता स्थापित की, उसके बाद इस सूरत का पूरा को पूरा

0: व्यापारी कारोबार या एडमिनिस्ट्रेशन सब मुगलों के द्वारा चला। यह सिलसिला ईस्वी सन 1759 तक चला। उसके बाद में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और तब तक मुगलाई चली। तो अकबर ने पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूरत को बनाया था 1573 के बाद, तो उसमें क्या था कि सिटी में दो गवर्नर थे और दोनों की सत्ता समान थी। दोनों एक दूसरे पर निगाह रखता था। किले का अलग गवर्नर था, उसका काम किले का रक्षण और तापी का रक्षण और लेवल बेस को संभालना था, और दूसरा शहर का गवर्नर था।
1: किले के निर्माण के संबंध में वे बताते हैं,
0: सल्तनत काल में महमूद तृतीय करके जो सुल्तान था उसके टाइम में सूरत का गवर्नर था खुदावन खान उर्फ ख्वाजा सफर सलमानी। तो उसमें पोर्चुगीजों की रेड के सामने यानी पोर्चुगीजों के हमले के सामने सूरत सिटी का रक्षण करने के लिए इस किले का निर्माण कराया था 1540-41 में। और कहते हैं कि वो किला इतना मजबूत था कि अकबर को भी इस किले को लेने के लिए 1 महीना और 17 दिन लगे थे।
1: सूरत जो अपनी संपत्ति और समृद्धि से सदा से संसार को ललचाता रहा है, उसका सांस्कृतिक महत्व बताते हुए बाज बहादुर वाई वाला,
2: सूरत उसका पुराना नाम सूर्यपुर है, उसके आगे रांगेर था। सूर्य पत्नी का नाम रांगल और रांगल का जो स्थान है वो रांगेर में है। और सूर्य की तपोभूमि सूर्य के पास कतार गांव बोला जाता है, वहाँ पर सूर्य ने तप किया ऐसी बात है। और सूर्यपुर का अश्विनी कुमार यहाँ पर पढ़े, वो अश्विनी कुमार नाम अभी भी है।
1: इस आकर्षण में ही उसे दिए हैं असंख्य घाव। यही से शिवाजी को मिला था अपार खजाना, यही से फिरंगी अपना विश्वव्यापी व्यापार संचालित करते थे। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हीरालाल गांधी कहते हैं,
3: सूरत को कहा गया है सोने की मूरत। सूरत मुगल शाही जमाने में एक अच्छा सा बंदर था, वही आकर्षण की वजह से पहला ब्रिटिश जहाज सूरत में आया और सूरत से आयात निर्यात का व्यापार कई सदियों पहले हो रहा था। सूरत में है मक्काई पुल, सूरत में है मुगल सराय जहाँ से हज के लिए मक्का जाने के लिए ये बंदर था।
1: आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास में भी सूरत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रमेश गजीवाला बताते हैं,
4: सूरत में जो विकास हुआ उसमें कृषि आधारित उद्योगों का हुआ। वो कृषि आधारित उद्योगों में पेपर मिल, कैटल फीड, डैम, फिशिंग एंड मरीन इंडस्ट्री का विकास उसमें हुआ। वो खास करके सूरत के आदिबाजू के विस्तार में हुआ। दूसरा जो छोटा इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है और विकेंद्रित क्षेत्र में है, वो टेक्सटाइल। आज कम से कम सूरत में 3 लाख पावरलूम काम कर रही है। रासायनिक उद्योग में कम से कम सूरत में 400 यूनिट हमारे यहाँ है। ये डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री सूरत में बड़ी जोरों से चल रही है। 3 लाख आदमी उसमें रोजी पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो डायमंड है वो अमेरिका, बेल्जियम, इंग्लैंड, जापान और हांगकांग में भारत से जा रहे हैं।
1: ताप्ती तट के मेलों और उत्सवों में

0: ऊंचाइयों को छुआ है। गुजरात के साहित्यकार भगवती कुमार शर्मा बताते हैं,
1: गुजराती साहित्य के जो पहले अर्वाचीन कवि हुए, कवि नर्मद, जो सूरत के थे, गुजराती भाषा का जो पहला उपन्यास नॉवल लिखा गया करण घेलो, वह भी सूरत में लिखा गया और उसके लेखक नंद शंकर तुलजाराम मेहता भी सूरत के थे। गुजरात के ख्याति प्राप्त, मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाट्यकार जो हुए चंद्रवदन मेहता, वो भी सूरत के थे और सूरत में पैदा हुए, उनकी परवरिश भी हुई।
2: प्राप्ति के पट पर स्वतंत्रता का भी उद्घोष हुआ। सूरत जिला तो इस क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। दास बहादुर सवाई वाला कहते हैं,
3: महात्मा गांधी जी ने सूरत के पादरी आश्रम में कहा था कि मैं ये ब्रिटिश की जड़ उखड़ने वाला हूँ। गांधी को भी सूरत दिल्ली में हुई और बारगोली का सत्याग्रह पहला हुआ और उसमें विजय पाई तो जो पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार सत्य वहां से मिला।
0: यह है ताप्ती की लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव। बस एक कदम और आगे उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। खंबात की खाड़ी में वो अनंत सागर में विलीन हो जाती है।
2: परंतु क्या ये विलय इस यात्रा का अंत है? शायद नहीं, क्योंकि इसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वो तो युगों युगों से बह रही है, अथक अविराम अश्राम।

0: सुबह शाम।
1: 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है।
2: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। शाम दे 4:30 होए ने। हुण असि तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे हां, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सर्वन करोगे।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। हे शरण आपवामां कुशल कल्याणमयी दयामयी जगद्व्यापिके विश्वयमनु स्वरूप छे एवा जगदवंद्य चरणारविंदथी सुशोभित हे माँ दुर्गा अमारू आपत्तियोमांथी रक्षण करो, रक्षण करो।

सिंह ऊपर विराजिला, मस्तक ऊपर चंद्र धारण करनार, लीलम मरकट, लीलम मणि जेवा शोभता, शंख चक्र धनुष्य अने बाणने पोतानी चार भुजाओ थी धारण करता, त्रण नेत्रोथी सुशोभित

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।